0: जुर्को रेडियो 102.1 मेगाहर्ट्ज।
1: लो आयो है क्वालिटी मा नम्बर 1 दा मस्त सबै भन्दा का
2: ओ प्रकाश।

खड़के जाए कि स्वास्थ्य मिलाइए धने सराने सिमोटे छ मुखिया वाले